0: बुढा नीलकण्ठबाट तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ
1: सुमिरन एफएम
0: 100.9 मेगाहर्ट्ज।
2: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।
3: हम फैक्ट्री के लिए आए हैं, ना गांव की भलाई के लिए और ना ही किसी और मकसद से। आज राधा आपसे अपने दिल की बात कहने आई है। शगुन स्वीकार कर लीजिए।

0: नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
1: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
0: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
1: बरखुरदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

मोहित भाई की फरमाइश पे मैं वो एक हक परस्ती का कलाम मैंने पढ़ा है चंद अशार में, वो पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर माइक अवेश शौकत अवेशी साहब को देता हूँ। क्या

आखिरी शेर सुना रहा हूँ और ये कह के सुना रहा हूँ कि जिसकी मीडिया पे तस्दीक कर दी लोगों ने, जिसकी तस्दीक कर दी नहीं कर दी, सुना आप लोगों ने कि सिर्फ एक पूरे पाकिस्तान का एक एक आदमी जिसने कहा कि नहीं मैं अपनी कौम को नहीं बेचूंगा। इसमें तो होनी चाहिए बहुत जोर की तालियां कि पूरे पाकिस्तान का सिर्फ एक ही आदमी जिसने कहा कि चंद सिक्कों के एवज मैं अपनी कौम को नहीं बेचूंगा। तो ये एक शेर आखिरी

मैं तो हैरान हूं यार, आज के टाइम पर भी इतने बुरे लोग होते हैं। डू दे इवन एग्जिस्ट?

0: लोग किधर जा रहे हैं, बुरे लोगों की हो रही है उम्र लंबी, अच्छे लोग मर जा रहे हैं।
1: I would just say, अब अच्छे बुरे की समझ तो हमें हो गई है, लेकिन वो जो भी जैसा भी वो मेरा यार है और उसका दिल हमेशा मेरे पास है।

सुनोगे क्या कुछ? अभी अभी सोचा है मैडम, आप पे पूरा भरोसा है। चलो अच्छा सुनो, जो लाइन पसंद आती है वो चुनो। चाकू नहीं, गन नहीं, डॉन खाली फोन पर।

उसकी आयु 20 में रावण वो चेहरा जटायु 30 में पहुंचा और देखा फिर आए ना दिखा बस रेत सहरा की वायु फिर आई उम्र 50 चेहरे पे लिखा हताश अभी भी जारी तलाश आंखों में दिखा बस काश मिलते थे चेहरे जो काफी वो दिखते हैं आज भी पाक या पापी था कौन मैं ढूंढू बस साथ की तस्वीर कोई खास सी अक्सर ही नजरों के सामी बस धुंधली सी याद की था वो कौन शायद ये याद नहीं बस याद है ओढ़ी थी उसने भी धुन कोई सांस की ये देखो औरत का चेहरा कोई घरेलू कोई जुझारू कोई खुश है खेत की मेंढों पे कोई कहे मैं समाज सुधारू कोई न्यूड से व्यूज में फंसा चाहे कोई कुरीत के कपड़े उतारू कोई चैन से मरना चाहे कोई कहे गड़े मुर्दे उखाड़ू देखे है नादानी चेहरे देखे है मनमानी चेहरे देखे है इंसानी चेहरे देखे है कई ज्ञानी चेहरे अल्फाजों के चेहरे कुछ सीधे कुछ गहरे तकाजों के चेहरे कुछ बहते कुछ ठहरे आवाजों के चेहरों पे सियासी पहरे रिवाजों के चेहरों पे सामाजिक भैरे देखा भगवान का चेहरा गीता का चेहरा कुरान का चेहरा आंखों पे पट्टी है चेहरों की कोई सुबह का चेहरा कोई शाम का चेहरा कोई तो नाम का चेहरा किसी का साथी है किसमें मगन किससे है प्यार और किससे जलन क्या ऐसा है काम का चेहरा मिलते थे चेहरे जो काफी वो दिखते हैं आज भी पाक या पापी था कौन मैं ढूंढू बस सादगी

वो पास है पर लकीरें आधी आधी लगती है, सूरत सोई और सीरत जागी जागी लगती है, उसके चेहरे को देखूं तो इनकार दिखता है, निगाहों में झांकूं तो राजी राजी लगती है, जो उसे देख लूं तो सांसें थम सी जाती है, जो ना देखूं तो धड़कन भागी भागी लगती है, छोरी झुमका पायल पैर नशीड़ी लागे है, छोरा बिन पिए मदहोश।

हरियाणा के छोटे से गांव का जिक्र, घर खड़ा कर खेत में लिया रास्ता गुजर, कुछ है यार कदी कराना जात का फिक्र, घर बार में नहीं कमी थी राम का शुक्र। कला की बात के कला के है ना बेरा था, कंचा गोली गिल्ली डंडा शाम कद सवेरा था, बापू की मार और माँ ने करा लाड, चार दिना में ते एक गुजरा कोई ना बखेड़ा था। फिर पहुंचा HR 51 देखा एक था विज्ञापन, सपने बुनता गिनता मन छोरा तकता सिंहासन, खैर यहाँ से बदला सब बोल चाल रहन सहन, दोस्त यार बदले बदले घैन वैम। ये दूसरा दिन भी चल रहा था शांति में, ममता के पल्लू से निकला लाने को क्रांति, वे वॉज लिस्निंग स्लिम शेड।

की लेवन, लिखावट की आहट में छिपा हुआ रहने लगा, पन्नों पे भर के कुछ भी घिसा पिटा कहने लगा, बैटल्स में चोक हुआ जोक बना वो, दिल्ली बने लंग्स रोज धुआ बोझ बना वो, और रत्ती भर भी कला पेना दुनिया गौर करे, वाकिफ कला से जो नहीं दुनिया भर का शोर करे, तीसरा दिन डूबा लेके सबासार शोर में

बाजार सस्ता और बिक रहा था वो। ना जाने किस घड़ी का इंतजार था, चेहरे आसपास कई थे पर एक यार था। शुक्रान मंच का जहां खड़ा है वो, शुरू हो चुका है सफर दिन ये चार का।

तेरा भाई जेटबी जेटबी तुमसे शादी रचा के सनम, देखो दीघा में आ गए हम, लाइब्रेरी से झुमका तुम्हारे लिए।

आइए एक बार इंट्रो करते हैं, यहाँ से करते हैं। बोलू जी, आपका ही पार्ट है, बगल बच्चा, आइए।

आइए एक बार साइन तक पूरा कर लेते हैं स्टार्ट से। जी वहां से ओके रेडी सब। वन टू

0: डैड।
1: राहुल कैसा है बेटा? एवरीथिंग फाइन?
0: एवरीथिंग फाइन डैड। इनफैक्ट बहुत खुश हूँ मैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम।
1: हे आर यू इन लव?
2: तू ही मुझको बता दे।
0: हाउ डू यू नो?
1: बाप साले। When the son is in love, the father just knows.

0: सर्जन? वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।